सुप्रभात अंबाला, आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन है आज के प्रसारण में। आज है 9 जून 2026 मंगलवार, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष नवमी, 2083 विक्रम संवत। अंबाला में सूर्य उदय हुआ है 5:20 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:24 पर।

सबसे महत्वपूर्ण और उज्जवल पहलू वही है जो सत्य प्रेम भक्ति वाला है, जो नेकी नम्रता विशालता सहनशीलता करुणा दया और मानवता वाला है। इंसान तूने चयन करना है कि प्रेरणा किससे लेनी है, अपने मन को दिशा कौन सी देनी है, तूने मन को विष से भरना है या अमृत से।

दोस्तों भोजन एफएम नमत अशारिया सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हूं भोजन रूजियो पनिन पसंदीदा बात।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना

0: पेश है कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 2। आज के हमारे मेहमान है श्रीमती हरजीत कौर लांबा, प्रस्तुतकर्ता आजय किरने।
1: कार्यक्रम घर परिवार के आज के अंक में मैं किरनी सभी सुनने वालों का स्वागत करती हूं और हरजीत लांबा जी आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: सबसे पहले सभी सुनने वाले श्रोता को मेरा सत श्री अकाल, नमस्कार और किरनी जी आपका भी धन्यवाद कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप इस कार्यक्रम में आए। नारी ही शक्ति है नर की, नारी ही शोभा है घर की, जो उसे उचित सम्मान मिले तो घर में खुशियों के फूल के लिए। एक नारी अकेले ही काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। आप समझ ही गए होंगे कि आज चर्चा का विषय है नारी। अब आपसे मैं पूछना चाहती हूँ हरजीत जी, आप बेटियों यानी नारी की व्याख्या किन शब्दों में करोगे?
2: देखो, जब बेटी का जन्म होता है तो परिवार में बहुत खुशी का माहौल होता है। बेटी के बिना कोई परिवार पूरा नहीं होता। बहुत खुशनसीब हैं वो माता पिता जिनके परिवार में बेटी होती है। आपकी बेटी हमेशा आपकी स्थिति को समझती है। अच्छे बुरे का बेटियां परिवार के लिए उपहार की तरह होती हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा एक बेटी चाहते हैं ताकि उनका परिवार पूरा हो सके। कई लोग बेटी को बोझ समझते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। बेटियां उनके लिए वरदान होती हैं। यही बेटी नारी की भूमिका निभाती है।
1: जी हाँ, जो बेटी है वो घर को स्वर्ग बनाती है। हर एक चाहता है कि उसकी एक बेटी हो। बेटी समाज का मूल आधार है तथा ईश्वर द्वारा बनाई गई सबसे खूबसूरत और अमूल्य रचना है। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, नारी समाज में अनेक रिश्ते निभाती है, चाहे वो बहन का हो, माँ का हो, पत्नी का हो, दादी का हो, आपका क्या मानना है, कृपया विस्तार में बताइए।
2: परिवार में बेटी और बेटे का समान रूप से महत्व होता है। वर्तमान समाज में भेदभाव को मिटाकर बेटियों को महत्व देना चाहिए। बेटियां ही घर की संचालन शक्ति होती हैं। माँ, बहन एवं पत्नी के रूप में उनका सर्वांग जीवन त्याग एवं सेवा की लंबी गाथा है, उसका बहुत वर्णन है।
1: जी हाँ, एक नारी जो है बहन का, माँ का, पत्नी का, दादी का, सारे रिश्ते बखूबी और बहुत ही खूबसूरती से निभाती है। अब हरजीत जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जो आज की नारी है, नारी का वर्तमान जो स्वरूप है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं?
2: देखो, नारी समाज में भी सबसे आगे आई है। आज बेटियां कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर बेटियां विराजमान हैं। पुराने समय में लड़कियां बहुत समझी जाती थी, लेकिन आज का युग नारी युग है।
1: जी हाँ, मेरी राय भी यही है। मेरा मानना ये है कि जो वर्तमान की नारी है वो आर्थिक की दृष्टि से आजाद हो, शिक्षित हो, पुरुष की दास्तां से मुक्त हो, दोनों यानी कि एक पुरुष और एक महिला एक दूसरे का सम्मान करते हुए परिवार और समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। हाँ जी,
2: देखो किरणी जी, हमारे समाज में जागरूकता आई है, भ्रूण हत्या अब कम हुई है, गवर्नमेंट ने भी कानून जो है बना दिए हैं, बहुत सख्त कानून बनाए हैं कि बेटियों को जन्म से पहले आप भ्रूण हत्या नहीं कर सकते हैं, और रेशो में भी लड़कियां जो है वो लड़कों के बराबर हो गई है। अभी मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ। बेटी बोझ नहीं सम्मान है, घर की प्यारी सी मुस्कान है, आसमान की बुलंदियों को छूने के लिए तैयार है।
1: जी हाँ, इसीलिए हम सबको एक नारी का सम्मान करना चाहिए क्योंकि नारी से ही जीवन है। जी, आपकी कविता से मुझे भी दो लाइनें याद आ गई। मुस्कुराकर दर्द बुलाकर रिश्तों में बंधी थी दुनिया सारी, हर पथ को रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी। अब हम आपकी पसंद का एक गाना अपने श्रोताओं को सुनाएंगे, आप बताओ आपकी पसंद का गाना कौन सा है?
2: उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार कराते। किरण जी मुझे ये बहुत पसंद
1: है। चलो आपके पसंद का ये गाना हो जाए। जी हाँ, ये गाना बहुत अच्छा है और इसकी जो पहली दो लाइनें हैं जो कश्मीरी में है वो मुझे बहुत पसंद है। जैसे कि भाषा से खानो मजगूर दुमे रक्षत मैंने बह जानो। अब सब सुनने वालों को और आपको हम ये वाला गाना सुनाते हैं।
2: वाह खूब।

0: बहुत ही मनमोहक गाना था, हमने और लिस्टनर्स ने सुना। आप एक हाउसवाइफ भी हैं, आज के मौसम के हिसाब से आप कौन सी रेसिपी श्रोताओं को आज बताने वाले हैं?
1: आज मैं आपको फ्रूट क्रीम बनाना सिखाऊंगी। ठंडा हम खाने को भी मन करता है और पौष्टिक भी है। आजकल किरणी जी बच्चे जो हैं वो फल फ्रूट कुछ चीजें नहीं खाते हैं, इसलिए उनको खिलाना पड़ता है। तो छोटी सी रेसिपी है, उसमें घर में फ्रूट पड़े रहते हैं जैसे सेब, अनार, केला, कोई भी आप ले सकते हो। उनको छोटे छोटे काट कर बाउल में डाल लो, घर की मलाई पड़ी होती है उसको फेंट लो, अगर नहीं है करीम ले आओ, उसमें शहद मिलाकर उनको मिक्स करके आप बच्चों को खिलाओ, खुद खाओ, ये व्रत में भी खा सकते हो आप।
0: जी हाँ, बहुत ही बढ़िया रेसिपी और कम समय में बनने वाली, मैं भी आज ही ट्राई करूंगी। अब आपकी पसंद का एक और गाना हो जाए
1: तो क्यों ना वो लगाया जाए, अपने पुराने टाइम का गाना, ओ बाबुल प्यारे।
0: जी हाँ, आपके लिए और अपने श्रोताओं के लिए पेश है बाबुल प्यारे।

0: You are listening 90.0 FM, Radio with a Star, Hum Safar Zindagi Ka.
1: आप कोई घरेलू नुस्खा बताए जो सबके लिए कारगर हो।
2: हाँ जी किरणी जी, आजकल बारिश का मौसम है, तो कुछ ऐसा बताया जाए कि स्किन के लिए, खुजली के लिए, जैसे नारियल तेल में थोड़ा सा कपूर मिला के लगाएं कि उससे आपकी स्किन भी ग्लो करेगी और ये आपके लिए फायदेमंद भी होगा।
1: जी हाँ, हमारे श्रोताओं को कुछ तो इससे फायदा मिलेगा। मैं भी एक घरेलू नुस्खा आपके साथ और अपने श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो है हल्दी। हल्दी तो हर एक किचन में मिलती है। अगर शरीर के किसी हिस्से में चोट लगे तो गर्म दूध में हल्की फुल्की हल्दी डालकर पिए। हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है जो मसल्स में आई सूजन में राहत दिलाती है। हल्दी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट से इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है। हमारे ये दोनों घरेलू नुस्खों से शायद हमारे श्रोताओं को कुछ हेल्प मिले।

0: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: प्रोग्राम के अंतिम हिस्से में अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आप आज अंबाला कैंट के पहले FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आए हैं, आप अपने अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए।
2: हमें बहुत खुशी है कि अंबाला कैंट को अपना FM स्टेशन मिला है, जिसके माध्यम से हम सभी अंबाला वासी अपनी बात लोगों तक पहुंचाएंगे और पहुंचा सकते हैं। मेरी दिल से दुआ है कि दिन दुगनी रात चुगनी हो। मैं हमेशा FM सुनती रहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अंबाला में मेरे घर के पास FM खुल जाएगा, कि जिसको मैं बड़े मन से सुनती हूँ। अब
1: हरजीत जी, अब हम इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा है। उम्मीद है श्रोताओं को आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपका शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। अब लास्ट में आपकी पसंद का एक और गाना हो जाए।
2: आओ झूमे गाए मिलके धूम मचाए। आपका भी शुक्रिया, आपने मुझे आमंत्रित किया। हमारे श्रोतागण को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद जय भारत।
1: आइए, आपको हरजीत जी के पसंदीदा गाने के साथ छोड़े जा रही हूँ और मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद जय भारत।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 2। इसको प्रस्तुत किया आरजे किरने ने। रिकॉर्ड एडिट एवं निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता की पेशकश।
1: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
1: आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त आरजे शिवानी। आज मैं आपके लिए एक और पॉजिटिव स्टोरी लेकर आई हूं, जिसका शीर्षक है एक साधे सब सधे। एक लड़के ने एक बार एक बहुत ही धनवान व्यक्ति को देखकर धनवान बनने का निश्चय किया। वह धन कमाने के लिए कई दिनों तक मेहनत कर धन कमाने के पीछे पड़ा रहा और बहुत सारा पैसा कमा लिया। इसी बीच उसकी मुलाकात एक विद्वान से हो गई। विद्वान के ऐश्वर्य को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया और अब उसने विद्वान बनने का निश्चय कर लिया और अगले ही दिन से धन कमाने को छोड़कर पढ़ने लिखने में लग गया। वह अभी अक्षर ज्ञान सीख ही पाया था कि इसी बीच उसकी मुलाकात एक संगीतज्ञ से हो गई। उसको संगीत में अधिक आकर्षण दिखाई दिया, इसीलिए उस दिन उसने पढ़ाई बंद कर दी और संगीत सीखने लग गया। इस तरह काफी उम्र बीत गई। ना वह धनी हो सका, ना विद्वान, और ना ही अच्छा संगीतज्ञ बन पाया। तब उसे बड़ा दुख हुआ। एक दिन उसकी मुलाकात एक बहुत बड़े महात्मा से हुई। उसने महात्मा को अपने दुख का कारण बताया। महात्मा ने उसकी परेशानी सुनी और मुस्कुराकर बोले, बेटा, दुनिया बड़ी ही चिकनी है। जहां भी जाओगे वहां कोई ना कोई आकर्षण जरूर दिखाई देगा। एक निश्चय कर लो और फिर जी जान से उसको प्राप्त करने के लिए लग जाओ। तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, नहीं तो दुनिया के झमेलों में यूं ही चक्कर खाते रहोगे। बार बार रुचि बदलने से कहीं भी पहुंच नहीं पाओगे। युवक को महात्मा की बात समझ में आई और वह एक लक्ष्य बनाकर उसी का अभ्यास करने लगा। वैसे भी कहा गया है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जो भी कार्य करे पूरे तन मन से एकाग्रित होकर करे। बार बार इधर उधर भटकने से बेहतर यही है कि एक जगह टिक कर मेहनत की जाए, तभी सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अर्जुन की तरह सिर्फ हमें अपने लक्ष्य पर ही ध्यान देना चाहिए, तभी हम जीवन में अपने लक्ष्य को पा सकेंगे। इसी के साथ अब लेती हूँ मैं आपसे विदा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए और अपने आसपास खुशियाँ बांटते रहिए और सुनते रहिए 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
2: रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

जंगल शौक जवानों के कहीं करतब तीर कमानों के यहाँ नित नित मेले यहाँ नित नित मेले सजते हैं नित ढोल और ताशे बजते हैं।

तुमसे बढ़कर दुनिया में, तुमसे बढ़कर दुनिया में।

0: सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।
1: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो विविधता, हम सफर जिंदगी का

नमस्कार, आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सकारात्मक कहानियों की श्रृंखला में आज लेके आई हूँ एक और कहानी जिसका शीर्षक है गुरु दक्षिणा। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त RJ शिवानी। एक बार एक शिष्य ने विनम्रता पूर्वक अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ अन्य कहते हैं कि जीवन एक खेल है और कुछ जीवन को तो उत्सव की संज्ञा देते हैं, इनमें कौन सही है? गुरुजी ने तत्काल बड़े ही धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, पुत्र जिन्हें गुरु नहीं मिला उनके लिए जीवन एक संघर्ष है, जिन्हें गुरु मिल गया उनका जीवन एक खेल है, और जो लोग गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगते हैं मात्र वे ही जीवन को उत्सव का नाम देने में साहस जुटा पाते हैं। यह उत्तर सुनने के बाद भी शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट ना था, गुरुजी को इसका आभास हो गया। वह कहने लगे, लो मैं तुम्हें इसी संदर्भ में एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनोगे तो स्वयं ही अपने प्रश्नों का उत्तर पा सकोगे। उन्होंने जो कहानी सुनाई वह इस प्रकार थी। एक बार की बात है कि किसी गुरुकुल में 3 शिष्यों ने अपना अध्ययन संपूर्ण करने पर अपने गुरुजी से यह बताने के लिए विनती की कि उन्हें गुरु दक्षिणा में उनसे क्या चाहिए। गुरुजी पहले तो मंद मंद मुस्कुराए और फिर बड़े स्नेह पूर्वक कहने लगे, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में एक थैला भर के सूखी पत्तियां चाहिए, ला सकोगे? वे तीनों मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि उन्हें लगा वे बड़ी ही आसानी से गुरुजी की इच्छा को पूरी कर सकेंगे। सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र ही बिखरी रहती हैं। वह उत्साह पूर्वक एक ही स्वर में बोले, जी गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। अब वे तीनों शिष्य चलते चलते एक समीपस्थ जंगल में पहुंच चुके थे, लेकिन यह देखकर कि वहां पर तो सूखी पत्तियां केवल एक मुट्ठी भर ही थी, उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वह सोच में पड़ गए कि आखिर जंगल से कौन सूखी पत्तियां उठाकर ले गया होगा। इतने में ही उन्हें दूर से आता हुआ कोई किसान दिखाई दिया। वे उसके पास पहुंचकर उससे विनम्रता पूर्वक याचना करने लगे कि वह उन्हें केवल एक थैला भर सूखी पत्तियां दे दे। अब उस किसान ने उनसे क्षमा याचना करते हुए उन्हें यह बताया कि उनकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि उसने सूखी पत्तियों का ईंधन के रूप में पहले ही उपयोग कर लिया था। अब वे तीनों पास में ही एक गांव की ओर इस आशा से बढ़ने लगे कि हो सकता है वहां उस गांव में उनकी कोई सहायता कर सके। वहां पहुंचकर जब उन्होंने एक व्यापारी को देखा तो बड़ी ही उम्मीद से उससे एक थैला भर सूखी पत्तियां देने के लिए प्रार्थना करने लगे, लेकिन उन्हें फिर से एक बार निराशा ही हाथ लगी क्योंकि उस व्यापारी ने तो पहले ही कुछ पैसे कमाने के लिए सूखी पत्तियों के दोने बनाकर बेच दिए थे। लेकिन उस व्यापारी ने उदारता दिखाते हुए उन्हें एक बूढ़ी माँ का पता बताया जो सूखी पत्तियां एकत्रित किया करती थी, पर भाग्य ने यहाँ पर भी उनका साथ नहीं दिया क्योंकि वह बूढ़ी माँ तो उन पत्तियों को अलग अलग करके कई प्रकार की औषधियां बनाया करती थी। अब निराश होकर वह तीनों खाली हाथ ही गुरुकुल लौट गए। गुरुजी ने उन्हें देखते ही स्नेह पूर्वक पूछा, पुत्रों ले आए गुरु दक्षिणा? तीनों ने सर झुका लिया। गुरुजी द्वारा दोबारा पूछे जाने पर उनमें से एक शिष्य कहने लगा, गुरुदेव हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए, हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र ही बिखरी रहती होंगी, लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है कि लोग उनका भी कितनी तरह से उपयोग करते हैं। गुरुजी पहले की तरह ही मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक बोले, निराश क्यों होते हो, प्रसन्न हो जाओ, यही ज्ञान की सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करती बल्कि उनके भी अनेक उपयोग हुआ करते हैं, मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो। तीनों शिष्य गुरुजी को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने घर की ओर चले गए। वह शिष्य जो गुरु की कहानी एकाग्रचित होकर सुन रहा था अचानक बड़े ही उत्साह से बोला, गुरुजी अब मुझे भी अच्छी तरह से ज्ञात हो गया है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपका संकेत वस्तुतः इसी ओर है ना कि जब

बजाय उत्सव बन सके। दूसरे, यदि जीवन को एक खेल ही माना जाए तो बेहतर यही होगा कि हम निर्विक्षेप स्वस्थ एवं शांत प्रतियोगिता में ही भाग लें और अपने निष्पादन तथा निर्माण को ऊंचाई के शिखर पर ले जाने का अथक प्रयास करें। आप शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट था। अंततः मैं यही कहना चाहती हूँ कि यदि हम मन, वचन और कर्म इन तीनों ही स्तर पर इस कहानी का मूल्यांकन करें तो भी यह कहानी खरी ही उतरेगी। सबके प्रति पूर्वाग्रह से मुक्त मन वाला व्यक्ति अपने वचनों से कभी भी किसी को आहत करने का दुस्साहस नहीं करता। उसकी यही ऊर्जा उसके पुरुषार्थ के मार्ग की समस्त बाधाओं को हर लेती है। वस्तुतः हमारे जीवन का सबसे बड़ा उत्सव पुरुषार्थ ही होता है, ऐसा विद्वानों का मत है। ये थी आज की कहानी। बहुत जल्द ही एक नई कहानी के साथ दोबारा आपसे रूबरू होंगी। नमस्कार।

शब्द कहा जिससे ललित के जीवन में बाहर और अंदर एक क्रांति खड़ी हो गई। जो लला बाहर थी वो लला अंदर चली गई, और जो अंदर चली तो उसे एक नई ही दुनिया दिखाई दी। यानी वो मटेरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड की ओर जब मुड़ी तो एक क्रांति उसके अंदर घटी। और यही लला कहती है, तवई है तुम नंगई नसुन, यानी इसलिए वो नग्न अवस्था में नाचने लगी। ये नग्न अवस्था कपड़े उतरे हुए नग्न अवस्था नहीं, ये वो नग्न अवस्था है जहां पे हम सारे फसाद, जिसके कारण से हम अंदर की दुनिया को छिपा के रखते हैं और बाहर की दुनिया में कुछ और दिखाते हैं, ये उस फसाद को तोड़ने की बात कर रही है। वो कह रही है, मैंने वो सारी कंडीशन, सारे परसेप्शन, सारे बिलीफ, सारे आइडिया, सारे थॉट्स, सारे ऐसे जो जजमेंट्स उसके मन में थे जिसके कारण से एक आम आदमी दूसरे के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करता है, उसे वो सारे कंडीशंस छोड़ दिए और एक ऐसी दुनिया में पहुंच गई जो विचारहीन, विचारलेस, थॉटलेस स्टेट है। और उस थॉटलेस स्टेट से उसे वो परमात्मा दिखाई दिया, उसे वो शिव दिखाई दिया। कितनी गहरी बात ललित हमें इस वाक से कहती है। मैं नीरजा जी से कहूंगा कि तो विद्यो युह वाक पन्य हट तो युजन लुक बोजहन कि अथ वाकस मस्त कित पच सरस्वती हैकान अस्ताम वहित।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

हेलो, इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। आधे घंटे तक आप बने रहेंगे मेरे साथ और हम यह सफर तय करेंगे मुस्कुराते मुस्कुराते। लब पर जो आ जाए तराना अच्छा लगता है, गीत नया हो या हो पुराना अच्छा लगता है। मैं हूं रमेश मराठा, वेलकम।

जब कभी फरामोश किया था, बर्फ की चादर पे चलते चलते, गुजरते गुजरते इन्हीं राहों पे, जहां आज हमारी चाहतों के टुकड़े अब बिखर चुके हैं। जब कभी रिश्तों की अहमियत तुम समझोगे, तब तुम खामोशी से, चुपके से आना और देना मेरी दहलीज पे दस्तक। शायद हम अपनी भूली बिसरी यादों को फिर से ताजा करें और जिए अपने अतीत के साथ, संभलते संभलते एक दूसरे को

अपनी चाहतों की तरह तुम अक्सर कहा करते थे, मौसम आएंगे मौसम जाएंगे, पर काश कभी तुम लौट के आती, अपनी चुप्पी तोड़ लेती, मुझ पे एहसान फरमाती, अपने आगोश की पनाह में मुझे रख लेती, फिर मोहब्बत करती चुपचाप।

अपना दर्द छिपाए बैठे हैं एक सदी से। मुझको कहां खबर थी कि तुम यूं खफा हो जाओगे और साथ निभाने का अहद भी तोड़ दोगे। तुम सामने होते हो पर हर पल ओझल हो जाते हो शबनमी बूंदों की तरह। क्या तुम्हें मालूम है ढूंढा है मैंने तुमको इस कायनात के जर्रे जर्रे में इन हवाओं में इन वीरानियों में खंडहरों में यहां इन बेनाम बस्तियों में इन पानियों की गहराइयों में। पर मिला बस एक लम्हा तुम्हारी याद का सिर्फ तुम्हारी याद का।

कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब तक घूमोगे, आओ चल के बीते दिनों की छाँव में बैठें, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें कोई फूल खिला था, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें किसी आवाज की चांदी खनक उठी थी, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें किसी की नजरों के मोती बरसे थे। कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब तक घूमोगे।

0: सच तो ये है कसूर अपना है, चांद को छूने की तमन्ना की, आसमां को जमीन पर मांगा, फूल चाहा के पत्थरों पे खिले, कांटों में की तलाश खुशबू की, आरजू की कि आग ठंडक दे, बर्फ में ढूंढते रहे गर्मी, ख्वाब जो देखा चाह सच हो जाए, इसकी हमको सजा तो मिलनी थी, सच तो ये है कसूर अपना है।
1: जब कभी मेरे आंगन में पेड़ों की इन्हीं शाखों पे लचकती थी चांदनी, जब खुशनुमा मौसम के इन हसी लम्हों में तुम्हारा करीब आना, रुक जाना, उठ जाना, फिर ढल जाना, बिना कुछ कहे दूर जाकर मोहब्बत का इजहार करना।

मुझको अब न आरजू कोई न है कोई तमन्ना, बस तुम यूं ही मेरे ख्वाबों में आते रहो, यही एक हसरत लिए बरसों से भटक रहा हूं। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा मुझे मेल करिए ramesh.marathan@gmail.com। अब चाहेंगे आपसे इजाजत और छोड़ जाते हैं आप।

0: पेश है कार्यक्रम सरगम अंक एक, प्रस्तुत करेंगे आरजे किरणी।
1: पेश है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सरगम। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ किरणी। आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं पतीता फिल्म के गीत के साथ, जिसको स्वर दिए हैं लता मंगेशकर ने, लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

अभी आप फिल्म भाभी का गीत सुन रहे थे, लता मंगेशकर की आवाज में। संगीत था चित्रगुप्त का और बोल थे राजेंद्र कृष्ण के। लीजिए अब सुनिए साथी फिल्म का गीत, लता मंगेशकर के स्वर में। गीत शकील बदायूनी का और संगीत दिया है नौशाद ने।

कार्यक्रम का अगला नगमा है फिल्म रात और दिन से, जिसके संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, गाया है लता मंगेशकर और मनाडे ने, और इसके गीतकार है शैलेंद्र।

अब हम आपको सुना रहे हैं दुल्हन वही जो पिया मन भाई फिल्म का गाना, जिसको गाया है बंसरी सेन गुप्ता ने और जिसके गीतकार है रविंद्र जैन और संगीतकार भी है रविंद्र जैन।

अब आपको सुनाती हूँ फिल्म वक्त का गाना, जिसे गाया है आशा भोसले और महेंद्र कपूर ने। संगीतकार है रवि और गीतकार है साहिर लुधियानवी।

प्रोग्राम का अगला गाना है आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज में फिल्म गुमराह से, जिसका म्यूजिक दिया है रवि ने और जिसके बोल लिखे हैं साहिर ने।

पेश है मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना, जिसको संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने, फिल्म पत्थर के सनम से।

पेश है फिल्म एक नजर का गाना, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने, जिसके बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। पेश है गाना पत्ता पत्ता बूटा बूटा।

सुन रहे थे कार्यक्रम सरगम एपिसोड 1, प्रस्तुत किया आरजे किरनी ने, एडिटिंग व रिकॉर्डिंग दीपक कश्यप, निर्देशन भारत सोपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पेशकश।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

कहे रही संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत विपत कसोटी जे कसे सोई सांची मीत। सुविख्यात कवि रहीम दास द्वारा रचित ये दोहा हम सब ने आज तक सुना भी है और पढ़ा भी है। इस दोहे के माध्यम से कवि हमसे कहता है, जब व्यक्ति के पास संपत्ति होती है तब उसके अनेक सगे संबंधी तथा मित्र बनते हैं, उसके समीप आते हैं, पर विपत्ति के समय में जो आपका साथ दे वही सच्चा मित्र है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। आज एक नया कार्यक्रम लेके आया हूं और आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे दोस्ती की, दोस्तों की, और जिंदगी में हमारे दोस्तों का क्या महत्व है। आज का ये कार्यक्रम मैं अपने सभी दोस्तों को समर्पित कर रहा हूं, जो दोस्त हमारे साथ हैं और जो दोस्त हमारे साथ अब नहीं है। मैं ये कहूंगा कि दोस्ती और दोस्त ये भगवान ने पहले ही निर्धारित किए होते हैं। बिना दोस्तों के और बिना दोस्ती के जिंदगी अधूरी है। दोस्तों पर इतना निर्भर इंसान होता है शायद अपने सगे संबंधियों पर भी नहीं। कुछ दोस्त जिंदगी में छूट जाते हैं, कुछ दोस्त जिंदगी में थोड़े समय के लिए आते हैं, पर कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो जिंदगी पर अपनी छाप छोड़ देते हैं। दोस्ती एक पूजा है और पूजा ही दोस्ती है। दोस्ती एक प्रार्थना है। दोस्त एक साथी है और उसका साथ रहना ही दोस्ती कहा जाता है। अंग्रेजी में भी कहते हैं, ए फ्रेंड इन ए नीड इज फ्रेंड इन डीड।

व्यक्ति को प्रत्येक रिश्ता अपने जन्म से ही प्राप्त होता है। अन्य शब्दों में कहें तो ईश्वर पहले से ही बना के देता है, पर दोस्ती ही एक ऐसा रिश्ता है जिसका चुनाव व्यक्ति स्वयं करता है। सच्ची मित्रता रंग रूप नहीं देखता, जात पात नहीं देखता, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी तथा इसी प्रकार के किसी भी भेदभाव का खंडन करती है। आमतौर पर यह समझा जाता है मित्रता हम उम्र के मध्य होती है, पर यह गलत है। मित्रता किसी भी उम्र और किसी के साथ भी हो सकती है। व्यक्ति के जन्म के बाद से ही वो अपनों के मध्य रहता है, खेलता है, उनसे सीखता है, पर हर बार व्यक्ति हर किसी से साझा नहीं कर सकता। व्यक्ति का सच्चा मित्र ही उसके प्रत्येक राज को जानता है। पुस्तक ज्ञान की कुंजी है, तो एक सच्चा मित्र पूरी पुस्तकालय जैसा है, जो हमें समय समय पर जीवन के कठिनाइयों से लड़ने में सहायता प्रदान करता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्णय में दोस्तों की मुख्य भूमिका होती है। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति स्वयं जैसा होता है, वो अपने जीवन में दोस्त भी वैसा ही चुनता है, और व्यक्ति से कुछ गलत होता है तो समाज उसके दोस्तों को भी सम्मान रूप से उस गलती का भागीदार समझता है।

आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से। आज हम बात कर रहे हैं दोस्ती और दोस्तों पर, जहां लोग आपसे बात भी अपने स्वार्थ सिद्ध के मनोकामना से करते हैं। ऐसे में सच्ची मित्रता भी बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है। प्राचीन समय से ही लोग अपनी इच्छाओं व आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए दोस्ती करते थे तथा अपना कार्य हो जाने पर अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को दोस्ती का हाथ हमेशा सोच समझकर अन्य की ओर बढ़ाना चाहिए। व्यक्ति अपना सुख दुख तथा हर तरह की बात जिसे बांट सके, वो व्यक्ति का मित्र होता है। मित्रता जीवन के किसी भी पड़ाव में आकर तथा किसी से भी हो सकता है। एक पिता अपने पुत्र का

टूटे सुजन मनाए जो टूटे सो बार, रहमन फिर पाए टूटे मुक्तहा। मतलब सच्चे मित्र जितनी बार आपसे रूठे उन्हें मना लेना चाहिए, ठीक उसी प्रकार जैसे मोतियों की माला के टूट के बिखर जाने पर हम उन्हें बार बार पिरोते हैं क्योंकि वो मूल्यवान है। ठीक उसी प्रकार सच्चे मित्र भी मूल्यवान होते हैं और उन्हें नहीं खोना चाहिए। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मित्रता का महत्व होता है, ठीक उसी प्रकार मेरे जीवन में भी है। मेरे मित्रों का समूह मेरे लिए दूसरे परिवार जैसा है। जीवन में व्यक्ति जिन आदतों को वाहन करता है वो मित्रता की ही देन होती है। व्यक्ति के घर से निकलने पर पहली आवश्यकता मित्र होते हैं। सबसे पहले व्यक्ति मित्र बनाने की होड़ में लग जाता है क्योंकि मानव सामाजिक प्राणी है तथा वो अकेले नहीं रह सकता। पर यह कितनी गंभीर बात है, हम अपने लिए कोई जानवर भी लाते हैं तो उनके तहकीकात करके लाते हैं, पर हम मित्र बनाने में इतना समय नहीं लगाते, जबकि मित्रता व्यक्ति का पतन भी कर सकता है और व्यक्ति को कामयाबी के उच्च शिखर तक भी पहुंचा सकता है। ज्यादातर हम व्यक्ति को अपना मित्र बनाने से पहले उसके हाव भाव तथा उसका हंसमुख चेहरा ही देखते हैं जो संकट में हमारे काम नहीं आता। यहां पर मेरा एक व्यक्तिगत कहना है कि अगर आपसे दोस्त रूठ जाए या आप उनसे रूठ जाए तो जितना जल्दी हो सके आप उनको मना लें, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए, वो इतना दूर चला जाए कि आप उनसे कोई संवाद ही ना कर सके। इसलिए कहा गया है, तेरे जैसा यार कहां।

आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से। आज हम बात कर रहे हैं दोस्ती और दोस्तों पर। जीवन में लोगों के अनेक दोस्त बनते हैं, बचपन के दोस्त, स्कूल कॉलेज के दोस्त, व्यवसायिक दोस्त, मतलब टाइम पास के दोस्त आदि। इनमें से कुछ वक्त गुजारने के साथ पीछे छूट जाते हैं और कुछ जीवन भर आपके हर अच्छे बुरे परिस्थितियों में आपके साथ रहते हैं। अपनी परेशानी की बात अपने दोस्तों को बताने से निश्चय ही मन का भार कम होता है तथा मित्रता व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। मित्रता जीवन को रोमांच से भर देता है। मित्र के होने पर व्यक्ति खुद को अकेला महसूस नहीं करता तथा सच्चा मित्र बिना विचार किए ही आपके संकट में देख मदद के लिए आगे आता है। वरन लोग तो बहुत हैं जो कहते नहीं थकते हम आपके मित्र हैं। शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद कृष्ण द्वारकाधीश बने तथा सुदामा एक गरीब ब्राह्मण ही रहे। फिर भी विपत्ति पड़ने पर कृष्ण ने दोस्ती का फर्ज निभाया और सुदामा के सारे दुख दूर कर दिए। कुछ लोग बिना किसी रिश्ते के रिश्ता निभाते हैं, शायद वो लोग दोस्त कहलाते हैं। दोस्ती प्यार का दूसरा रूप है। दोस्ती एक भाव है। हम सभी के जीवन में एक, दो या इससे भी अधिक दोस्त होते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका कोई दोस्त ना हो। आपस में व्यवहार मिलने पर बहुत कम समय में अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर यह भी महत्व नहीं रखता कि हम उस व्यक्ति से कभी मिले हैं या नहीं। व्यक्ति समस्या अपने परिवार के साथ भी बांट नहीं पाता है। वो मित्रता में दोस्तों को बड़े आराम से बता देता है, जिसके साथ हम जीवन के उत्साह, हर्ष, उल्लास, खुशी तथा शोक के बिना किसी तोड़ मरोड़ के साथ बांट सकते हैं। वही व्यक्ति का सच्चा मित्र है। मित्र हमें हर बुरे कार्यों से बचाता है तथा जीवन के हर कठिनाई में हमारे साथ रहता है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ जाता है। मुझे आशा है कि आपको ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा। आप अपनी राय हमारे व्हाट्सएप नंबर 9416013010 पर दे सकते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुमूल्य है। आप सब अपना ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।

मैं लेकर आई हूँ हरियाणवी कार्यक्रम की वो छार, जिसमा थानू लेकर जाऊंगी अलग अलग गांव के अलग अलग लोगों के बीच मा, और थन जान सकांगे मारे हरियाणा के रीति रिवाजा के बारे में। तो सुनना ना भूलियो, और शनिवार और रविवार सवेरी 7:05 पा और दोपहर नू 2 बजे सिर्फ और सिर्फ थारे अपने रेडियो रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ सा। धन्यवाद, सुनते रहो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता।

0: बालाकैंड का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: योसा FM 90.0 मेगाहर्ट्ज के प्रसारण रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अंबाला केंट से हमारी प्रसारण।

सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं सिंगर नीलम नारायण। मेरा एक बहुत प्यारा वीडियो सॉन्ग मीठे मीठे इश्क की रिलीज हो चुका है, जो आप रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पे सुनने जा रहे हैं। अपना स्नेह जरूर दें। धन्यवाद।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी।
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: थी दालच में, एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

0: Hey, Dutch Mahal. एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन ना जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 705641301 पर।
4: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
5: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: पेश है कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 4। हमारे आज के मेहमान हैं श्रीमती दीप्ति बाला जी। प्रस्तुत करेंगे RJ सेजल।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। और कार्यक्रम शुरू हो चुका है घर परिवार अंक 4, आरजे सेजल के साथ। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वह है परवरिश और टेक्नोलॉजी। पहले समय में परवरिश और आज के समय के पालन पोषण में काफी अंतर आ चुका है। कहीं ना कहीं इस बदलाव में बदलती या कह लीजिए बढ़ती टेक्नोलॉजी का भी योगदान है, जो अब बड़ों के हाथ से निकलकर बच्चों के हाथ में आ गई है। और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दीप्ति बालाजी, जो एक अध्यापिका हैं और पिछले 23 सालों से अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं और साथ ही एक सिंगल मदर भी हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सेजल, आपका मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने का बहुत बहुत धन्यवाद और सुनने वाले श्रोताओं का भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हम इस कार्यक्रम की अब शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी, जैसे हम परवरिश के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपके मुताबिक पहले समय की जो परवरिश होती थी और आज के समय में जिस तरीके से बच्चों की परवरिश हो रही है, उसमें आपको क्या अंतर लगता है?
1: पहले समय में ये होता था कि मदर्स जो थी ज्यादातर होममेकर्स होती थी और घर पर ही रहती थी, लेकिन आजकल के बदलते हुए दौर में ये देखा गया है कि मदर्स जो है वो ऑफिस जाती हैं, बाहर काम करने जाती हैं, तो उसमें बच्चों को पालन पोषण में काफ़ी परेशानी होती है। पहले टाइम में क्या होता था कि जैसे हम अभी हमने ये सुना है कि बच्चों के साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए, उनको मित्र के जैसे रखना चाहिए, लेकिन पहले टाइम में ये सब नहीं था। जब हम छोटे थे तो हमारी मदर जो थी हमारे साथ एक मदर की तरह ही बिहेव करती थी, कभी एक मित्र की तरह हमसे बात नहीं करते थे और हमें डर होता था उनका। कोई भी बात है, कोई गलत बात करने से पहले हमें ये होता था कहीं मम्मी देख ना ले, कहीं पापा देख ना ले, या कह लो कि एक डिस्टेंस होता था, हमें डर होता था। लेकिन आजकल की जो मदर्स हैं वो बच्चों के साथ इतना फ्रेंडली बिहेव करती हैं, ये अच्छी भी बात है, ये कि एक गलत बात नहीं है, लेकिन वो इतना फ्रेंडली हो जाती हैं कि बच्चों में जो एक मदर और एक बच्चे का डिस्टेंस होना चाहिए वो भूल जाता है। आप ये सोच लो कि कोई भी बात अगर उन्हें कोई खटकती है तो अब वो एकदम से नेट पे सर्च करती हैं, अगर बच्चा ये कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, ये कर रहा है तो क्या करना चाहिए इसके लिए, क्योंकि उनके पास बड़े नहीं होते। आजकल ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं, लोग ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहते
0: जी।
1: तो ये थोड़ा एक तरह से माइनस पॉइंट होता है कि हम नहीं पूछते किसी से यहाँ से, तो मतलब नेट तो नेट ही है, वो क्या आपको दिखाए इसका कुछ पता नहीं है।
0: आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि आज के टाइम में इंटरनेट एक ऐसी चीज़ बन चुका है कि हर एक चीज़ का सोल्यूशन लेने के लिए हम कहीं ना कहीं इंटरनेट की ओर ही भागते हैं। आज टेक्नोलॉजी के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप टीचर भी हैं और एक मदर भी हैं, ज़्यादा मुश्किल स्कूल में बच्चों को संभालना होता है या घर में बच्चों को संभालना होता है?
1: देखिए, बच्चे तो बच्चे होते हैं, घर पे हो चाहे बाहर हो, बच्चों को तो संभालना मुश्किल होता ही है। लेकिन ये होता है कि आपके बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि जैसे मैं एक टीचर हूँ, मैं मदर्स से भी बात करती हूँ तो मदर्स मतलब यही बोलती हैं कि बच्चा हमारा कहना नहीं मानता, हमारे कंट्रोल में नहीं है, 24 घंटे फोन पे लगा रहता है। लेकिन मैंने ये हमेशा उनको बोलती हूँ कि अभी बच्चा छोटा है, जो छोटा बच्चा होता है ना वो इमोशनली अटैचमेंट होती है उसके साथ। हम क्लास में भी ये ऐसे करते हैं कि जैसे हम बच्चों को बोलते हैं कि अगर तू ये पढ़ेगा तो मैं तेरे को मतलब क्लैपिंग करवाऊंगी क्लास में, ऐसे मोटिवेशन करते रहते हैं बच्चों की। लेकिन आजकल की जो मदर्स हैं ना वो खुद ही फ़ोन पे बिजी रहती हैं। जैसे कि मैं एक टीचर हूँ, मेरा मतलब ये रूटीन है, मैं जब भी क्लास में एंटर करती हूँ ना सबसे पहले 5-10 मिनट बच्चों को मोटिवेशनल थोड़ी स्पीच देती हूँ, उनको एथिक्स समझाती हूँ, बेसिक नॉलेज देती हूँ बच्चों को कि अपनी जो मदर है उसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, या कुछ ऐसी गाइडेंस सुबह ही देती हूँ ताकि सारा दिन बच्चों का माइंड जो है ना वो सेट रहता है।
0: जी, बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं कम उम्र में ही उनको इस कॉन्फिडेंस की, इस मोटिवेशन की बहुत ही कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पर। जैसे कि हम बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी के बारे में,
1: जी
0: आज के समय में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि पहले टाइम में कंपैरिजन होता था बच्चों को लेके, कि रिलेटिव्स के साथ बच्चे कंपेयर करते थे पेरेंट्स कि कोई पढ़ाई में अच्छा है, हमारा बच्चा नहीं अच्छा। लेकिन आज के समय में आप कह लीजिए कि तुलना अड़ोस पड़ोस और रिश्तेदारों से हटकर अब दुनिया तक पहुंच चुकी है, क्योंकि हमारे हाथ में फोन है, हम रील्स देखते हैं, इंटरनेट पे एक्सप्लोर करते हैं, तो देश दुनिया के कई सारे बच्चों का हमें टैलेंट दिखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं हम अपने ही बच्चों में कमी ढूंढने लग जाते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है कि किस तरीके से इस चीज को ठीक कर सकते हैं?
1: हम ये अक्सर देखते हैं कि पेरेंट्स जो हैं वो इंटरनेट पे बच्चों की काबिलियत देख के, दूसरे बच्चों की काबिलियत देख के, उनकी पोस्ट देख के चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी सेम वैसे ही ढंग से करे। लेकिन मेरे नज़र में ये चीज़ गलत है। हमें अपने बच्चों को इस तरह से दूसरों बच्चों के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। हमें अपने बच्चों का इंटरेस्ट देखना चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं, और उसी ढंग को अपनाते हुए हमें बच्चों को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए।
0: जी बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन आज के समय में जैसे हम देख सकते हैं कि इंटरनेट काफी आगे बढ़ चुका है, और ऐसी रील्स जो है स्क्रॉल करते करते हमारे सामने आ ही जाती हैं, और उन्हें नजरअंदाज करना भी मुश्किल है, क्योंकि ऐसी रील्स हर पेरेंट्स की सोशल मीडिया फीड पर ना जाने ही कितनी ही होंगी। तो अब ऐसे में आपके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए?
1: देखिए, यहाँ पे तो ये है कि जो रील्स में हमें दिखाया जाता है, हम उसी पहलू को देखते हैं। क्या आपने उनके घर की व्यवस्था देखी है कि वो घर में बच्चे किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से रहते हैं, क्या बिहेव करते हैं? हमें सिर्फ मीडिया में काफ़ी टाइम की मशक्कत के बाद एक 5-10 मिनट की, या कह लो कुछ सेकंड्स की वीडियो दिखाई जाती है, और उनका एक ब्राइट पार्ट ही बच्चे का दिखाया जाता है। लेकिन एक्चुअल में वो बच्चे कैसे हैं, उनकी नेचर कैसी है, उनके पेरेंट्स कैसे हैं, उनका घर कैसा है, उनका रहन-सहन कैसा है, ये चीज़ नहीं दिखाई जाती। तो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट देखते हुए हमें अपने बच्चों को उन पे नहीं थोपना चाहिए। आप बच्चे की खुद की काबिलियत देखिए और बच्चे के अकॉर्डिंग ही आपको डिसीजन लेना चाहिए।
0: जी हाँ, बच्चों की उम्र भी बहुत कम होती है इन सब चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि उनके लिए सब एनवायरनमेंट भी नया है, ये सब चीज़ें भी नई हैं, फ़ोन भी उनके लिए नया है। जो पेरेंट्स हैं वही एक तरीके से बच्चों को हर एक चीज़ से, हर एक पहलू से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो कहीं ना कहीं अहम भूमिका पेरेंट्स की ही रहती है इन सब चीज़ों की इंट्रोडक्शन में। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कहीं ना कहीं कंपैरिजन बच्चों का मोरल भी डाउन करता है। इसी जगह अगर हम उनके साथ खेलें, उनसे बात करें, और उनकी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। साथ ही आप बच्चों को काफी समय से पढ़ाती आ रही हैं, तो आपके मुताबिक उन्हें किन एक्टिविटीज के द्वारा अपने साथ जोड़ा जा सकता है?
1: एक्टिविटीज़ तो बहुत हैं। जैसे मेरे खुद के दो बच्चे हैं,
0: जी
1: तो जब वो छोटे थे ना, मुझे याद है मेरा बड़ा बेटा UKG में था, तब से मैंने उसको इंडिपेंडेंट बनाया।
0: जी
1: मैं खुद जॉब करती थी, मैं स्कूल चली जाती थी, तो मैं बच्चे को बोलती थी कि बेटा घर को लॉक ऐसे लगाना है, अच्छे से चेक करना है, ताला खींच के देखना है ताला लग गया है कि नहीं, उनको पूरा सिक्योरिटी के साथ पूरा अरेंज करके सुबह नाश्ते में दे दिया खाने को। वो स्कूल से जल्दी आ जाते थे, मैं लेट आती थी घर, तो मैं खाने के लिए कुछ रख जाती थी कि ये आपने स्कूल से आके ये करना है, यूनिफॉर्म उतारनी है, और उनको काम दे जाती थी करने के लिए कि आपने ये लर्न करके रखना है, मैंने आते ही सुनना है। और मैंने शुरू से ही उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया। जैसे उनकी वार्डरोब जो थी वो अलग कर दी कि बेटा अपने जो क्लोथ्स हैं वो खुद ही रैप करके अलमीरा में रखने हैं, और संडे के संडे मैं खुद बच्चों को बोलती थी अपनी अलमीरा के कपड़े निकालिए, उसको अच्छे से अरेंज कीजिए। और जब मैंने किचन में काम करती थी, कभी उसको प्याज दे देना छीलने के लिए कि बेटा ये प्याज छीलो, मेरी हेल्प करो, तो बच्चे बड़े खुश होते थे इन चीज़ों के लिए। तो लेकिन मेरे को लगता है कि आजकल की माएँ ये हेल्प नहीं लेती हैं, बच्चों को खुद जो है मोबाइल पकड़ा दे देती की हैं कि वो मोबाइल लेके अपना बिजी रहेंगे और हम अपना काम कर लेंगे।
0: जी, कहीं ना कहीं आज के टाइम पे बच्चों को ज़्यादा पैम्पर भी किया जाता है, ताकि पेरेंट जो है, अगर वर्किंग वुमेन भी हैं, वो अपना काम ठीक से कर सकें और बच्चे शरारतें ना करें। तो कहीं ना कहीं फ़ोन का आजकल सहारा लिया जा रहा है, और एज एन टीचर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्लासरूम में बच्चे बहुत शरारती होते हैं, उन्हें संभालना भी मुश्किल होता है, तो आप किन तरीके की एक्टिविटीज बच्चों को करने के लिए कहती हैं ताकि वो क्लास में एक तो बिजी रहे और मेंटली भी क्रिएटिव रहे।
1: रीडिंग वगैरह बच्चे करते रहते हैं, कभी लर्निंग होगी, टेस्ट हो गया, ऐसे काम करते रहते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे ये सब करने के बाद जब फ्री टाइम मिलता है तो मैं उनको जैसे वर्ड चेन कुछ ऐसी गेम्स खिलाती हूँ कि चलो बेटा, जैसे मैं क्लास में जितने भी बच्चे हैं अ लेटर से जितने हैं वो खड़े हो जाओ और मुझे 5-5 कोई वर्ड्स न्यू बना के अ लेटर से ही सुनाओ। तो ऐसी मैं गेम्स खिलाती रहती हूँ। फिर बच्चों को, मतलब बच्चे घर पे भी बिजी रहें, उसके लिए जैसे मान लो उनकी पेंसिल बॉक्स है, कई बच्चों की बहुत सी अनटाइडी हो जाती है, पेंसिल शॉप करते हैं तो वो ब्लैक सी हो जाती है, तो मैं बच्चों को बोलती हूँ बेटा देखो आप घर में नहाते हो ना, तो आपने क्या करना है, घर जाके अपनी पेंसिल बॉक्स को भी नहलाना है
0: जी।
1: तो उसमें जैसे सॉक्स में साबुन डाल लिया, उनको पूरा ढंग बताती हूँ कि फिर मैं उनको पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बताती हूँ कि मेरे बच्चे, मैं खुद अपने बच्चों को बोलती हूँ कि ये देखो पेंसिल बॉक्स से आपकी अनटाइडी हो गई है, इसको वॉश करो। तो मैं ये भी चाहती हूँ कि जिस तरह से मैं घर पे बिहेव करती हूँ एज अ मदर, उस तरह से मैं स्कूल में आपकी मम्मा हूँ, तो आप जैसे मैं बोलूंगी वैसे, मैंने कल देखनी है सबकी पेंसिल बॉक्स साफ होनी चाहिए। तो बच्चे बहुत खुश होते हैं, सुबह जब नेक्स्ट डे आते हैं तो मुझे दिखाते हैं, देखो मैम ये मेरी पेंसिल बॉक्स देखो कितनी सुंदर सी लग रही है, मैं भी नहाया था और मेरी पेंसिल बॉक्स भी नहाई थी। और इसी तरह से वाटर बॉटल भी, और पेरेंट्स भी खुश होते हैं जब वो पीटीएम पे आते हैं ना तो मेरे से डिस्कस करते हैं कि मैम देखो आपने ऐसा बोला था बच्चों को करने के लिए, वो घर आके हमें बोलते हैं कि मैंने अपनी पेंसिल बॉक्स को भी नहलाना है, अपनी बॉटल को भी साफ करना है। क्लास में भी काफ़ी एक्टिविटीज हम करते रहते हैं, जैसे डिस्प्ले बोर्ड को हम डेकोरेट करते हैं तो बच्चों की मैं हेल्प लेती हूँ कि बेटा देखो ये जो चार्ट मैं लगा रही हूँ ये ठीक है, ऊपर तो नहीं है नीचे तो नहीं है ऐसे, तो स्टेपल पिन के साथ उनको मतलब सिखाती हूँ कि ये देखो ऐसे स्टेपल करते हैं, इस तरह से आप घर में भी मम्मा की हेल्प किया करो, अरेंज किया करो, चीज़ें ब्यूटीफुल रखा करो, जिस तरह आप अपने घर को ब्यूटीफुल रखते हो अपनी क्लास को भी ब्यूटीफुल रखें। इस तरह से काफ़ी हम एक्टिविटीज़ करते रहते हैं क्लास में और बच्चे बहुत खुश होते हैं
0: जी। कहीं ना कहीं माँ के बाद स्कूल में ही टीचर जो है, दूसरे गुरु जो होते हैं हमारे, वो ही रोल प्ले करते हैं
1: जी,
0: बच्चों
1: जी।
0: को अच्छे से परवरिश देने में, उनके हर एक चीज़ मॉरल एथिक्स सिखाने में,
1: हाँ जी।
0: तो टीचर्स का भी एक अच्छा रोल रहता है। साथ ही अभी हम बात कर रहे थे कि इंडिपेंडेंट होने की, कि बच्चों को हमेशा इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, और आज का टाइम भी ऐसा ही है कि बच्चों को बचपन से ही इंडिपेंडेंसी के बारे में सिखाना चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि कौन सी एज ठीक रहती है कि बच्चों को हम अपने साथ इन्वॉल्व करना शुरू करें, उन्हें नई नई चीजें सिखाना शुरू करें कि वो मेंटली इतने एक्टिव रहते हैं कि ये काम कर सके वो?
1: देखिए ऐसे तो बच्चों की कोई एज नहीं होती
0: जी।
1: आजकल के बच्चे तो कह लो कि जैसे हम कहते हैं कि कंप्यूटराइज्ड बच्चे हैं।
0: जी
1: हमारे टाइम पे ये था कि हमें कोई चीज समझने में काफी टाइम लग जाता था कि जैसे आजकल आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जैसे हाथ जब उनका चलना शुरू हो जाता है तो मोबाइल पे ऐसे हाथ चलाते हैं जैसे सारा सिस्टम पता है। हमारे टाइम में ये सब चीजें नहीं होती थी, लेकिन ये है कि अगर हम इसी चीज का फायदा उठाते हुए बच्चे को शुरू से ही इंडिपेंडेंट कर ली, क्योंकि आजकल मदर्स जो हैं मोस्टली जॉब करती हैं तो फोन में ना लगाते हुए मदर्स जो हैं बच्चों को उसी लाइन में मोटिवेट करें, जैसे घर में अपने काम में हेल्प लें बच्चों से, या कुछ अच्छा सिखाएं, अच्छा दिखाएं। जैसे कि मान लो कि मैं ये चाहती हूँ कि अपने कल्चर के साथ अपने रिलीजन के साथ भी टच होना चाहिए बच्चों को शुरू से ही, जैसे हम सुबह उठें सबको नमस्ते या जो भी आप बोलते हो वो बोलें, उनसे उनको बताएं कि भगवान जी के बारे में ऐसी चीज़ें बताएं, मतलब उनको ऐसी चीज़ें सिखानी चाहिए शुरू से ही बच्चों को। तो ऐसे होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ना तो बच्चे ये देखते हैं कि हमारे मम्मी पापा जो हैं हमें ये चीज़ें बताते हैं अच्छी बातें, बच्चे तो बच्चे होते हैं उनको ये भी पता होता है कि ये बात अच्छी है और ये बात मतलब हमें अच्छी नहीं लग रही। शुरू से ही हमें बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, क्योंकि आगे जाके आप जैसे देख रहे हो कि बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो हम अगर बच्चे को वो शुरू से ही ये आदत डालें तो हमारे लिए कंफर्टेबल होगा ये चीज़।
0: जी, कहीं ना कहीं हमारे कल्चर से भी, जो हमारे ट्रेडिशन रहे हैं, क्योंकि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे काफ़ी सारे कल्चर्स हैं, काफ़ी ट्रेडिशंस हैं, काफ़ी रिलीजन्स हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत खूबसूरत देश भी है हमारा, और बच्चों को हर एक कल्चर के बारे में भी जानना चाहिए, खासतौर के अपने कल्चर के बारे में, जिस कल्चर में वह रहते हैं, जो उनकी मदर टंग है, जिस भी प्रकार से आपके घर में ते फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं।
1: जी जी।
0: साथ ही अभी हम बातें बहुत करेंगे और भी करेंगे, लेकिन अब वक्त हो चला है एक प्यारे से गीत का। आप गीत भी जरूर सुनती होंगी। आपका कोई पसंदीदा गीत हो जो आप हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहें तो प्लीज आप गुनगुनाएं जरूर।
1: जब भी मैं कभी मेरे मन पे किसी तरह का भी बोझ होता है या कुछ भी मेरा मन ऐसे विचलित होता है तो मैं हमेशा यही सॉन्ग गुनगुनाती हूँ और क्लास में इवन बच्चों को भी सुनाती हूँ। बहुत अच्छे से बोल है इसके
0: जी।

0: स्वागत है आप सभी का एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद। अब वापस रुक करते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, जो है परवरिश और टेक्नोलॉजी। जैसे कि अभी हम बात कर चुके हैं कंपैरिजन के बारे में, एक्टिविटीज के बारे में, कि बच्चों को किन एक्टिविटीज के जरिए अपने साथ जोड़ा जा सकता है। साथ ही आज के समय में न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रही हैं, जहां मदर्स जो हैं वो वर्किंग हैं, घर भी संभालती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं। लेकिन आजकल देखा जाता है जैसे बच्चे जब खाना नहीं खाते, ज़्यादा शैतानी करते हैं, उन्हें फ़ोन देकर बिठा दिया जाता है। फ़ोन के बारे में भी अभी हमने काफ़ी बातें की वैसे। और हाँ, बच्चों को मोबाइल दिखाकर खाना खिलाना हमारे लिए तो आसान काम है ही, लेकिन यह उनके मन मस्तिष्क पर भी काफ़ी बुरा असर डाल सकता है। तो इसके बारे में दीप्ति जी, आपका क्या कहना है?
1: जी सेजल, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैंने अपने सराउंडिंग्स में ये चीज़ें बहुत देखी हैं कि पहले तो बच्चा कहता है मुझे भूख नहीं है, मैंने खाना नहीं खाना, तो मदर्स क्या करती हैं, वो उनको बोलती हैं कि बेटा मैं आपको ना अभी फोन पे ना एक वीडियो दिखाती हूँ, आप सिर्फ 5 मिनट्स उसको देखो, और उसी दौरान वो बच्चे को खाना खिलाना शुरू कर देती हैं। जो बच्चा पहले कह रहा है मुझे भूख नहीं है, तो वो फोन जैसे ही मदर ऑन करती है तो बच्चा खाना शुरू कर देता है, वो बाइट देते जाती हैं, वो खाता जाता है। इस दौरान ये होता है कि बच्चा जिस तरह का प्रोग्राम देख रहा है ना, बच्चे की एक्साइटमेंट वैसी हो जाती है। तो बच्चा क्या करता है कि कभी बार तो बिना चबाए ही उसको भोजन को अंदर निगल लेता है
0: जी।
1: तो मैंने ये चीज़ देखी है कि ये गलत बात है। बच्चे को कभी भी खाना खाते हुए फ़ोन देना ये बहुत गलत बात है, ऐसा मदर्स को नहीं करना चाहिए। लेकिन इससे क्या होता है कि बच्चों की पाचन शक्ति जो है वो कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि बच्चे भोजन चबाते नहीं है अच्छे से खाना खाते ही नहीं है। वो एक्साइटमेंट के दौरान, जैसे कोई एक्साइटमेंट सीन आ रहा है तो वो उसके दौरान बच्चे फटाफट चबा लेते हैं या ध्यान ही नहीं देते, और बच्चा क्या खा रहा है बच्चे को वो भी नहीं पता, बच्चे को उसका टेस्ट ही नहीं पता चलता चीज़ का कि हम खा क्या रहे हैं, कौन सी वेजिटेबल खा रहे हैं, और उसको कोई जानकारी नहीं होती। और इस चीज़ के बाद ये है कि एक तो बच्चे की पाचन शक्ति कमज़ोर हो रही है, दूसरा उसकी आंखों पे असर पड़ रहा है क्योंकि वो साथ में फ़ोन देख रहा है। इसका कोई और अल्टरनेटिव ढूंढे, या मतलब उनको देखना चाहिए कि जिस तरह से बच्चे जो अपनी सेहत का भी ध्यान रखें और अपनी आंखों का भी ध्यान रखें।
0: जी बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं कहीं ना कहीं उनकी सेंसेस उस टाइम पर डेवलप हो रही होती हैं, उनका शरीर फिजिकली तौर पर भी वो डेवलप हो रहे होते हैं, इससे कहीं ना कहीं उनके मेंटल लेवल पर भी, फिजिकल लेवल पर भी, क्रिएटिविटी लेवल पर हर एक तरह से असर डलता है। क्योंकि जब खाना ही वह अच्छे से नहीं खाएंगे तो वो शरीर को लगेगा ही नहीं, शरीर में ताकत ही नहीं आ पाएगी। तो अब प्रॉब्लम तो हमें पता चल गई है कि इससे क्या दिक्कत हो सकती है अगर हम बच्चों को फोन दिखाकर खाना खिला रहे हैं, तो इसका अब सोल्यूशन क्या है? हम बच्चों को किस तरीके से खाना भी खिला पाए और वो बच्चे फोन की तरफ भी ना भागे?
1: देखिए, ये तो आपको पता ही है बच्चों को जो है कहानियां बहुत पसंद है
0: जी।
1: मान लो कि आप कोई सब्जी खिला रहे हो बच्चों को, आप उसी सब्जी के रिलेटेड कोई कहानी बना ले, जैसे उनको बोलें कि बेटा ये देखो ये ग्रीन कलर की वेजिटेबल है, ये अगर हम खाएंगे ना हमारे पास बहुत ताकत आएगी। उनको बताइए कि ये पालक की सब्जी है, ये आलू की सब्जी है, एक तो उनको वेजिटेबल्स का पता चल जाएगा, और उनको आप मतलब इस ढंग से एक बाइट तोड़िए, उनको ऐसे कोई एरोप्लेन बनाइए, ये देखो बेटा ये एरोप्लेन आ रहा है, मुंह खोलो आप, ये एरोप्लेन आपके मुंह में जाएगा, यूं करके ऐसे। मैंने तो मतलब अपने बच्चों को बचपन में भी चीजें अगर खिलाई है ना तो इस ढंग से ही कहानियां बना बना के, और बच्चे बड़े इंटरेस्टिंग वे से ये चीजें देखते भी और सुनते भी हैं। ये नहीं कि मोबाइल के द्वारा ही बच्चे एंटरटेन होते हैं, बच्चों को अपनी माँ की बताई हुई कहानियां भी बहुत पसंद होती हैं। तो इसी तरह से बच्चों का जो है स्क्रीन टाइम जो है वो कम हो जाएगा। आप बच्चों को किसी और ढंग से खाना खिलाएंगे, बच्चे वो ढंग सीखेंगे, अगर आप फोन देंगे तो बच्चे फोन वाला ढंग सीख जाएंगे। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप एज अ मदर बच्चे को कैसे ट्रीट करते हैं।
0: जी, अब तो ये जैसे खाने की हमने बात कर ली कि खाना हम बच्चों को कैसे दें, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बच्चे अब कुछ बड़े हो चुके हैं, बच्चों को आदत डल जाती है फोन की, अब वो आदत छुड़ाना भी मुश्किल है। तो खाने के बाद खाना हम कहानियों से खिला देंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चे जिद पकड़ लेते हैं कि नहीं फोन ही चाहिए। तो उस जिद को कैसे तोड़ें और बच्चों को किस तरीके से वहां से डाइवर्ट किया जाए, कैसे उन्हें वास्तविकता से परिचय दिलाया जाए?
1: देखिए, सबसे पहले तो माओ को खुद फोन छोड़ना होगा। ये चीज मैंने एज अ टीचर भी देखी है कि मदर्स खुद फोन में बिजी रहती हैं, बच्चे भी तो वही चीज देखते हैं। अगर बच्चे मान लो स्कूल से घर आ गए हैं तो मदर्स जो हैं कभी पूछती भी नहीं है, बेटा स्कूल में क्या किया, मैम ने क्या करवाया, ये चीजें नहीं पूछेंगे। तो हमें सबसे पहले तो खुद पे कंट्रोल करना चाहिए। और आप बच्चों को कहीं घुमाने लेके जाइए, जैसे बच्चों को मान लो संडे के संडे छुट्टी होती है, आप बच्चों को बोलो बेटा हम ना आपको पार्क में लेके जाएंगे, तो बच्चे क्या होते हैं सोशलाइज भी होते हैं एक दूसरे के साथ, और जब वो पार्क में जाएंगे खेलेंगे कूदेंगे। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप बच्चों के साथ खुद इन्वॉल्व होएं, बच्चों के साथ खुद खेलें। जैसे मेरे बेटे हैं तो जब मेरे को याद है वो छोटे थे ना तो उनको क्रिकेट खेलना बड़ा पसंद था, तो मैं क्या करती थी मैं खुद उनके साथ क्रिकेट खेलती थी। इवन की काइट फ्लाइंग में मैंने उनकी बहुत मदद की है, मैंने खुद अपने बच्चों को सिखाया है कि काइट कैसे उड़ाते हैं। इससे क्या होता है कि मदर्स और बच्चों का इंटरेक्शन भी बढ़ती है और बच्चे खुद ही अपनी बातें जो है मदर से शेयर करते हैं कि माँ हमारे साथ बच्चा बन रही है, हमारे जैसे ही खेल खेल रही है, तो बच्चे बहुत खुश होते हैं इस ढंग से।
0: जी कहीं ना कहीं मदर और बच्चे की भी बॉन्डिंग बनती है, और आगे जाकर कभी बच्चा दिक्कत महसूस करता है अपनी जिंदगी में तो उसे आसानी होती है कि अपने पेरेंट्स से वो शेयर कर पाए और उसका सलूशन उन्हें मिल सके, क्योंकि पेरेंट्स को जितना एक्सपीरियंस हो चुका होता है लाइफ का, कहीं ना कहीं बच्चों को उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है।
1: जी
0: अब आप एक टीचर हैं तो आपके पास ऐसे पेरेंट्स भी आते होंगे जो काफी आपके इश्यू लेकर आते होंगे कि बच्चे जो हैं बात नहीं सुनते, बहुत जिद्दी हैं या बहुत ज्यादा शरारती हैं, कि उन्हें किस तरीके से समझाया जा सके, क्योंकि बच्चे आजकल के बहुत क्लेवर हो चुके हैं क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, और टीचर्स के लिए भी कभी कभी मुश्किल हो जाता है बच्चों को संभालना। तो आप इन सब चीजों को किस तरीके से टैकल करते हैं और क्या आप पेरेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे कि वो किस तरीके से इस चीज को टैकल करें?
1: जी सेजल, ये तो है, बच्चे तो बहुत शरारती होते हैं आजकल के, उनको कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मेरी क्लास में भी कुछ बहुत नोटी बच्चे हैं, टॉकेटिव भी हैं, और ऐसे जैसे बैठे बैठे ही कोई शरारत कर देते हैं, ऐसे बच्चे भी हैं। तो मैं इन बच्चों को टैकल करने के लिए क्या करती हूँ कि बच्चों को ड्यूटीज देती हूँ
0: जी,
1: कि क्लास में जैसे बेटा आपने जब सुबह आना है लाइट्स ऑन करनी है, और डिस्पर्सल टाइम आपकी ड्यूटी है आपने लाइट्स ऑफ करनी है। तो ऐसे शरारती बच्चों को इसी तरह की क्लास की कोई ड्यूटी दे देती हूँ, तो बच्चे जो है ना अपने आप में प्राउड फील करते हैं कि मैम ने हमें ड्यूटी दी है तो हमें कुछ स्पेशल होगा, तभी तो हमें ड्यूटी मिली है, ऐसे थोड़ी ना मिली है। कई बार बच्चों को क्लास को मॉनिटर बना देती हूँ कि बेटा आप आज से ना क्लास के मॉनिटर हो, तो मैं कभी भी बाहर जाऊं तो आपने क्लास को कंट्रोल करना है पीछे से। तो ये होता है कि एक तो उनकी शरारतों पे ध्यान नहीं जाता, उनकी शरारतें कम हो जाती हैं और मेरा भी काम हो जाता है। ऐसे बच्चों को ऐसे ही टैकल किया जाता है। ये चीज है कि जो बच्चे जितने शरारती होते हैं ना वो बच्चे पढ़ने में भी उतने इंटेलिजेंट होते हैं, ये चीज हमेशा मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है। यही मदर्स को कहना चाहती हूँ कि आप भी घर पे बच्चों को कोई ना कोई टास्क दें, कोई काम दें, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, जिससे बच्चों को थोड़ा प्राउड फील हो और बच्चों की शरारतें जो है ना वो अपने आप कम हो जाएंगी।
0: साथ ही कुछ बच्चे शरारती होते हैं, कुछ की पर्सनैलिटी ही एक्सट्रोवर्टेड होती है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के, शाय पर्सनैलिटी के होते हैं, कम बोलने वाले होते हैं। लेकिन आज के टाइम पर कहीं ना कहीं बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना, उन्हें सोशलाइज करना सिखाना बहुत ही मुश्किल टास्क है, क्योंकि आप एक इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के साथ आज के टाइम पर बाहर निकलना, दुनिया में रहना कहीं ना कहीं मुश्किल है। तो उस हिसाब से बच्चों का कॉन्फिडेंस किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है?
1: देखिए, स्कूल में तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के बहुत से टास्क होते हैं
0: जी।
1: जैसे कि सुबह की असेंबली होती है, हम बच्चों को पार्टिसिपेट करवाते हैं उसमें, जैसे राइम्स बोलना, कंपेयरिंग करना, छोटे छोटे काफी टास्क होते हैं। जैसे क्लास में ही बच्चों को कोई गेम खिलाई जाती है, और हम पेरेंट्स को भी ये चीज बोलते हैं कि बच्चों को आप घर में मोबाइल के साथ टचिंग नहीं रखें बच्चों की। जैसे छुट्टी होती है, पेरेंट्स को भी संडे सैटरडे वीकेंड पे छुट्टी होती है, कहीं किसी दिन त्यौहार पे छुट्टी होती है, तो हम पेरेंट्स को भी ये बोलते हैं कि बच्चों को बाहर घुमाने लेके जाइए, अपनी ऑब्जर्वेशन में रखिए और बच्चों को थोड़ा सोशलाइज कीजिए, बड़ों से बात करवाइए, ताकि बच्चे जो हैं अपने मन के भाव जो हैं वो शेयर करते हैं। ये चीज़ हमने ना रिसेस टाइम में बहुत देखी है कि जो बच्चे क्लास में शाय होते हैं ना, कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई डर होता है, लेकिन वो रिसेस के टाइम बच्चों की लैंग्वेज, उनकी टोन सब चेंज हो जाती है। तो उसी से हमें मतलब थोड़ा एस्टिमेट हो जाता है कि नहीं, ये शाई नेचर का नहीं है, इसकी हेसिटेशन इम्प्रूव करने की थोड़ी नीड है। तो एज ए टीचर हम उस पर फिर वर्क करते हैं
0: जी, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे रिसेस टाइम पे अपने आप को फ्री महसूस करते हैं, क्योंकि आसपास बच्चे होते हैं, दोस्त होते हैं, दोस्तों के पास वैसे ही बच्चे एक फ्री एनवायरमेंट में रहते हैं।
1: जी जी,
0: तो साथ ही अब और बातें भी करेंगे, हॉबीज के बारे में बच्चों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अब वक्त है एक और म्यूजिकल ब्रेक का और आपकी मधुर आवाज में एक गीत का।
1: जी, एक और सॉन्ग है जो कि मुझे गुनगुनाना बहुत ही अच्छा लगता है। आई थिंक ये सॉन्ग सब लोगों को पसंद होगा।

0: आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, और कार्यक्रम चल रहा है घर परिवार। अभी हम बात कर चुके हैं आज के समय की परवरिश की, मोबाइल के योगदान की, और इससे बचा कैसे जा सकता है। अब वक्त है बात करने का एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के बारे में और हॉबीज के बारे में। आज के समय में बच्चे मल्टीटास्कर बन रहे हैं और माता पिता भी उन्हें अलग अलग एक्टिविटीज में इंडल्ज कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में कॉम्पिटिशन बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। तो मैम, आपका क्या इस पर विचार है?
1: देखिए, हमारे टाइम में क्या होता था कि बच्चों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देने के लिए बोला जाता था, और हम भी ऐसा ही करते थे, पढ़ाई पे ही ध्यान होता था, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज पे तो कोई ध्यान नहीं होता था। लेकिन जिस तरह से आजकल मीडिया में सारा दिखाया जा रहा है, बच्चे इतनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करते हैं, तो आजकल के जो पेरेंट्स हैं, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करे
0: जी।
1: तो ये अच्छी बात है, बच्चों को ऐसा करवाना भी चाहिए, लेकिन बच्चों को पूछ के, ये नहीं कि पेरेंट्स जो चाहते हैं उसके रिगार्डिंग ही बच्चों को कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। अगर आप अपनी मर्जी से बच्चों को पार्टिसिपेट करवाएंगे तो उसमें ये होगा कि बच्चों का उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा, सिखाने के बावजूद भी बच्चा वो चीज़ नहीं सीखेगा। ये अच्छी बात है, बच्चों को एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। घर के आसपास जो भी कोई एकेडमी कुछ भी हो, बच्चों को वहाँ पर भेजिए और बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही उनमें पार्टिसिपेट करवाएं, ताकि आपको भी सहूलियत रहे, आप आसानी से उसको छोड़ने जा सकें, लेने जा सकें।
0: और जैसे आज के टाइम पे कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुका है एज़ कम्पेयर टू पहले का टाइम जो रहा, और ख़ास तौर पर ये कंपटीशन का प्रेशर कहीं ना कहीं पेरेंट्स पर भी बना रहता है कि किस तरीके से अपने बच्चे को इस कंपटीशन में आगे बढ़ाया जा सके
1: जी।
0: तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बच्चों पर भी इसका असर पड़ता होगा, तो इस पर आप क्या कहना चाहती हैं?
1: मैं यही बात आपको बोलूँगी कि सबसे पहले तो पेरेंट्स को पेशेंस रखनी चाहिए, उनको काम रहना चाहिए
0: जी।
1: मतलब ये नहीं कि अगर कोई दौड़ चल रही है तो उसमें आप चाहें कि आपका बच्चा भी दौड़े, ऐसा करेंगे तो आप खुद प्रेशर में रहेंगे, आप बच्चों को क्या संभालेंगे। इसीलिए आपको प्रेशराइज नहीं होना है, आपको प्रेशर में नहीं रहना है, ठंडे मन से सोचिए, आप बच्चे की पहले रुचि पूछिए कि बच्चा क्या करना चाहता है, उसके रिगार्डिंग ही बच्चे को पार्टिसिपेट करवाइए, और बच्चे को हर मुश्किल में संभालने के लिए आपको पहले तैयार होना पड़ेगा। अगर आप ही तैयार नहीं होंगे, बच्चे की कोई प्रॉब्लम नहीं सुनेंगे, उसका सलूशन कैसे निकालेंगे। हाइपर नहीं होना आपको, आपको भी बच्चे के साथ ही जैसा बच्चा चाहे उसके अकॉर्डिंग ही आपको ढलना चाहिए।
0: जी बिल्कुल, बच्चे की बात सुनना भी उतना ही जरूरी है
1: जी,
0: क्योंकि
1: जी।
0: हम समझ ही नहीं पाएंगे कि उसका इंटरेस्ट किस ओर जा रहा है
1: जी।
0: साथ ही पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों को एक्स्ट्रा हॉबीज क्लासेस, चाहे वो विंटर वेकेशन हो या समर वेकेशन हो या एग्जाम्स के बाद जो वेकेशन आती हैं, उनमें चाहते हैं कि बच्चे कुछ नई चीजें सीखे।

0: ना बच्चे जब ही खुद कहें तब आप उनको पार्टिसिपेट करवाइए, अपनी मर्जी से नहीं और ना ही उन पे कोई प्रेशराइज करके उनको किसी चीज पे एक्टिविटी को अटेंड करने के लिए बोले।
1: आपकी क्लास में भी कई ऐसे बच्चे होंगे, जैसे हर साल नई क्लास आती है, नए बच्चे आते हैं, तो बच्चों का इतना पता नहीं होता कि कौन सा बच्चा किस लेवल तक पार्टिसिपेट कर सकता है, किस चीज में अच्छा है। तो आप ऐसी क्या ट्रिक अपनाती हैं बच्चों को समझने के लिए या बच्चों की एक्टिविटीज जानने के लिए कि बच्चा किस एक्टिविटी में रुचि रखता है?
0: जैसे कि हमारे फुल वीक में एक डे ऐसा होता है जब हम स्टोरी टेलिंग कोई कहानी सुनाते हैं,
1: जी,
0: तो बच्चे बड़े खुश होके वो कहानी सुनते हैं। इसी तरह से मैं भी कई बार बच्चों को बोलती हूँ कि बेटा आप भी कोई कहानी सुनाओ, अगर आपको कुछ अच्छा लगता है वो करके दिखाओ। तो बच्चे जो हैं अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। कोई बच्चा कहता है मैम मुझे गाना आता है, मैं गाना सुनाऊँ, मैं डांस करके दिखाऊँ, मुझे एक अच्छी कहानी आती है, मुझे ये चीज़ बनानी आती है, मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट की ये चीज़ बनानी आती है, मैम मुझे ड्राइंग करनी आती है। ये फिर हमें बच्चों से ऐसी टचिंग रखने से बच्चों का पता चल जाता है कि बच्चे किस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो पीटीएम पे हम पेरेंट्स को भी बोलते हैं कि आपका बच्चा जो है इस चीज़ को बड़े अच्छे से कवर करता है, तो आप इसको उस पर पार्टिसिपेट करवाइए। हम काफ़ी पेरेंट्स की हेल्प करते हैं इस चीज़ में। मैंने ये चीज़ देखी है कि इवन कि बच्चे जब रिसेस में खाना खाते हैं ना, लंच ब्रेक में, तो मतलब मुझे ये इवन पता होता है कि बच्चे को ये वाली वेजिटेबल जो है ना ये पसंद नहीं है, ये बच्चे को ये वाली वेजिटेबल पसंद है। तो जब हम पीटीएम पे पेरेंट्स से इंटरेक्ट होते हैं तो मैं पेरेंट्स से कई बार ये शेयर करती हूँ कि आपका बेटा जो है या बेटी जो है वो ये चीज़ नहीं अच्छे उसको लगती, उसको ये खाने में ये चीज़ नहीं अच्छी लगती। तो वो बड़े हैरान होते हैं कि मैम आपको कैसे पता है, हमें तो बच्चे कभी ये चीज़ बताते नहीं है। तो मतलब टीचर जो है ना वो मतलब बच्चों के साथ अगर अच्छे से इंटरेक्ट करे तो बच्चे अपनी मन की बात आई थिंक पेरेंट्स से ज़्यादा टीचर्स के साथ शेयर करते हैं।
1: कहीं ना कहीं आपकी बातों से अगर हम एक कंक्लूजन की कोशिश करें तो यही निकलता है कि बच्चों को जानने की जो चाबी है, उनके रहस्य का जो ताले की चाबी है, वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन ही है। कम्युनिकेशन ही एक ऐसी की है जिससे बच्चों को जाना जा सकता है, बच्चों को समझा जा सकता है और ये भी पता लगाया जा सकता है कि ऐसी वो क्या चीज़ें अपने मन में रखते हैं, किस इंटरेस्ट में रहते हैं, क्या शौक रखते हैं। हम मानते हैं कि क्लास में टीचर्स बोलते हैं कि ज़्यादा बातें नहीं करनी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी बातें करना भी जरूरी है ताकि बच्चों को हम जान सकें।
0: जी जी।
1: और एक मैं ये चीज पूछना चाहूंगी कि एज एन टीचर आप बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए एक क्या मैसेज देना चाहेंगी, और देश के विकसित होने में एक बच्चे को अच्छी शिक्षा देने में टीचर की बहुत एक अहम भूमिका रहती है, तो उसमें आपको क्या लगता है कि आपका अब तक कितना योगदान रहा?
0: मेरे खुद का 23 इयर्स का टीचिंग का एक्सपीरियंस है, कोई छोटा एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे को बहुत खुशी होती है कि जब मैं बच्चों को कुछ नई नई बातें सिखाती हूँ। मेरे को अगर घर में भी कोई परेशानी हो या कुछ भी हो तो मैं स्कूल आके सब भूल जाती हूँ कि बच्चों के हंसते हुए चेहरे देख के, बच्चों से बातें करके मुझे याद ही नहीं रहता कि मुझे कोई परेशानी थी। ये सोच लो कि 5-6 घंटे मैं तो दूसरी दुनिया में रहती हूँ कि अपनी दुनिया होती है। तो एज अ टीचर भी मैं ये चीज़ सोचती हूँ कि टीचर्स अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं बच्चों को मोटिवेट करके। इवन टीचर को पता चल जाता है कि बच्चे गलत राह पे चल रहे हैं, तो एक टीचर अगर बच्चे को गाइड करे ना तो आई थिंक कि मदर से ज़्यादा वो टीचर की बात सुनते हैं। तो टीचर चाहे तो सब कुछ कर सकती है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि ये बिल्डर्स हैं, देश को बनाने वाले टीचर्स ही हैं। तो जिसने भी ये चीज़ कही है ना, तो ये फैक्ट है कि टीचर अगर चाहे तो बच्चों को कहीं से कहीं पहुंचा सकती है, लेकिन पेरेंट्स की सपोर्ट के बिना नहीं। अगर पेरेंट्स टीचर को सपोर्ट करें तो हम बच्चे को हर मुश्किल से निकाल सकते हैं, उनकी मन की बात समझ सकते हैं। और मैं मदर्स को, आजकल की मदर्स को यही मैसेज दूंगी कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, और जितना रोल एक मदर का है ना उतना ही फादर का भी है। ये नहीं कि फादर अगर जॉब करते हैं तो फादर को बच्चों से इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए। आप भी बच्चों से पूछिए कि आज स्कूल में बच्चे ने क्या किया, टीचर ने क्या करवाया, बेटा आपने डायरी लिखी है, आपने मैम ने कोई टेस्ट दिया है। दोनों का उतना ही रोल है जितना कि एक टीचर का है। तो मैं पेरेंट्स को यही बोलूँगी कि अगर टेक्नोलॉजी बढ़ रही है लेकिन अपनी जड़ें नहीं छोड़ी है, जिस तरह से आपके पेरेंट्स ने आपको पाला है, मैं यही चाहती हूँ कि आजकल के पेरेंट्स भी उतने ही प्यार से

0: उतने ही निकटता से अपने बच्चों के साथ संबंध बनाइए और उनकी मन की बातें समझिए, ताकि आने वाले टाइम में बच्चे आपसे दूर ना हों।
1: और जाते जाते एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि यहाँ पर आपको आकर कैसा लगा?
0: मुझे यहाँ आकर बहुत ही खुशी मिली। मैंने अपने मन की बातें जो हैं वो शेयर की यहाँ पे आके, और सेजल आपने बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे। कहीं ना कहीं इन्होंने मेरा पुराना वक्त मुझे याद दिला दिया, अपने बच्चों के साथ उनका बचपन याद दिला दिया। और FM 90.0 रेडियो विदस्ता में आकर मुझे बहुत ही खुशी हुई, और मैं आगे भविष्य में भी ये चाहूंगी कि आप मुझे फिर से बुलाएं और हम इसी तरह से प्यार भरी बातें करें।
1: जी, और अब वक्त है आप सभी को एक गीत के साथ छोड़े चले जाने का, तो आखिर में बच्चों के लिए आप कौन सा गीत चाहेंगी जो आप हमारे श्रोताओं को भी सुनाना चाहें और बच्चों को डेडिकेट करना चाहें?
0: रे मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे, ये प्यारा सा गीत आप बच्चों को सुना दीजिए।
1: जी, अब मुझे भी दीजिए इजाजत क्योंकि वक्त हो चला है अब मेरे भी जाने का, और आपको छोड़े चले जा रहे हैं इसी मधुर गीत के साथ। अब मुलाकात होगी अगले अंक में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
0: धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

सुन रहे थे कार्यक्रम घर परिवार एपिसोड 4। हमारे आज के मेहमान थे श्रीमती दीप्ति बाला जी। प्रस्तुत किया आरजे सेजल ने। एडिटिंग दीपक कश्यप। निर्देशन भारत सुपोरी।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: तोशु बोजान FM 90.0 रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी हूं। बोजान रोजू पनीन पसंदीद बर्थ।
3: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।
4: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
5: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा, आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
2: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 MHz पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: आप सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: सुनिए और सुनाइए रेडियो वितस्ता, सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो वितस्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो वितस्ता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।

सुनिए बप्पी लाहिरी के दिल छूने वाले गीत हमारे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। उनकी आवाज और संगीत आपको ले जाएंगे पुराने सुनहरे दिनों की यादों में, और साथ ही आनंद लीजिए इस संगीत के सफर का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

सुनें अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।
2: तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो।
3: कर दिया मेरे ते जो सर्दियां तेरे नाल फुटवा कराउन जो
2: रेडियो वितस्ता
3: असले पौन पटाके
2: सुन मेरे दिलदारा 90.0 मेगा

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता पर। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

मशहूर सिने और नाटक अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के दूसरे पुत्र शम्मी कपूर का जन्म 21 अक्टूबर सन 1931 को मुंबई में हुआ था। 8 साल की उम्र से ही वो पापा के साथ नाटकों में काम करने लगे थे। शम्मी 5वीं में थी तो अक्सर नाटक प्रस्तुत करने के लिए पापा के साथ दूसरे शहरों में जाया करती थी। इससे वो कभी ठीक से स्कूल नहीं जा पाए। उनके स्कूल न जाने की वजह से हेडमास्टर ने शम्मी का नाम काट दिया। जब इस बात की जानकारी पृथ्वीराज कपूर को हुई तो उन्होंने शम्मी का नाम दूसरे स्कूल में लिखवा दिया। साथ ही शम्मी को मुंबई से बाहर ले जाने का सिलसिला भी बंद कर दिया। पृथ्वीराज चाहते थे कि शम्मी की पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े। मैट्रिक की परीक्षा के बाद पापा ने पूछा कि आगे क्या करने का इरादा है।

तो शमी का जवाब था कि अब आगे पढ़ने के बजाय बड़े भैया राज कपूर की तरह वो भी फिल्मों में उतरेंगे। इस पर पृथ्वीराज ने कहा, ठीक है, तुम हमें हीरो बनकर दिखाओ। तुम्हारे इस काम में ना मैं मदद करूंगा और ना राज कपूर। तुम्हें अपने बूते पर फिल्मों में काम पाकर दिखा।

हिम्मत नहीं हारी बल्कि पूरे आत्मविश्वास और हिम्मत के साथ फिल्मों में काम तलाशना शुरू कर दिया। वो हर दिन फिल्म निर्माताओं के घर चक्कर लगाने लगे। मगर कोई शम्मी को अपनी फिल्म में काम देने को राजी नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने काम

एक रोज वो निर्माता निर्देशक महेश कौल से मिले तो उन्होंने शम्मी को अपनी फिल्म जीवन ज्योति में बतौर हीरो का रोल देने का फैसला किया। फिल्म की हीरोइन चांद आसमानी भी पहली बार इस फिल्म में काम कर रही थी। जब ये फिल्म सिनेमा घरों में आई तो शम्मी कपूर रातों रात हीरो बनकर दर्शकों के दिलो दिमाग पर छा गए।

जीवन ज्योति के बाद निर्माता केदार शर्मा ने अपनी फिल्म रंगीन रातें में शम्मी को हीरो का रोल दिया, जिसमें माला सिन्हा हीरोइन थी। उस दौर की मशहूर अभिनेत्री गीता बाली भी केदार शर्मा की फिल्मों में काम कर रही थी। इस बीच गीता बाली और शम्मी कपूर में दोस्ती हो गई। ये दोस्ती प्यार में बदल गई और प्यार परवान चढ़ने लगा।

कॉफी हाउस मिस कोको कोला में गीता बाली शमी कपूर ने साथ काम किया और ये जोड़ी सुपरहिट साबित हुई। शमी कपूर ने गीता बाली को लेकर अपनी मम्मी से चर्चा की तो मम्मी ने ये बात पृथ्वीराज यानी शमी के पापा को बता दी। जब पृथ्वीराज को शमी की अपनी मर्जी से शादी करने की बात पता चली तो उन्होंने शमी को बुलाकर खूब डांट पिलाते हुए कहा कि कोई हीरोइन कपूर खानदान की बहू नहीं बन सकती, लेकिन बड़े भाई राज कपूर और भाभी कृष्णा ने पापा से सिफारिश की, किसी तरह इस शादी के लिए राजी हो गए। लेकिन शादी से पहले एक शर्त रखी कि शादी के बाद हमारी बहू फिल्मों में काम नहीं करेगी। गीता ने उनकी ये बात खुशी खुशी मान ली।

फिल्मों में अपनी दिलकश अदा के जरिए दर्शकों के दिलों पर कई दशक तक राज किया। उनके फिल्मी गाने और डायलॉग आज भी मशहूर हैं। उन्होंने फिल्मों में कई तरह के रोल अदा किए, लेकिन उनके रोमांटिक रोल आज भी फिल्मों में जीवंत लगते हैं। सन 1966 में बनी फिल्म तीसरी मंजिल उनकी कामयाब फिल्म रही। उनके अपोजिट थे आशा पारेख।

0: प्यार।
1: अय्या सुकु सुकु,
0: अय्या करूं मैं क्या, सुकु सुकु खो गया दिल मेरा, सुकु सुकु अय्या करूं मैं क्या, सुकु सुकु।
2: रफी की आवाज उन पर सटीक बैठती थी, अदाकारी की उनकी बिंदास शैली हमेशा के लिए मशहूर हो गई। जैसे याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे वाले उनके स्टाइल को भला कौन नहीं जानता। रफी के गीतों ने शम्मी को सितार बनाया तो शंकर जयकिशन के संगीत ने उनमें चाशनी पिरोई।
0: हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं, हम क्या करें, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने को जी कहता रहे। हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं, हम क्या करें, चाहे कोई मुझे जंगली कहे।

गीता बाली का सन 1966 में निधन होने के बाद उन्होंने दूसरी शादी सन 1969 में नीला देवी से की। आज शम्मी कपूर भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बिंदास अदाकारी हमारे दिलो दिमाग पर अभी भी जीवित।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

दोस्तों भोजन एफएम नमत आचार्य सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हुन भोजन रोजियो पनिन पसंदीदा बात।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 705641301 पर।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। आज की शाम हम सजाए हैं गजल के उस हरफन मौला गायक भूपिंदर सिंह और मिताली जी के नाम। दर्द, जज्बात, मोहब्बत और अल्फाजों के सुरूर के साथ पेश है शामे गजल।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 5। पेश करेंगे आरजे किरणी। आज के कार्यक्रम का शीर्षक है यादें। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया राहुल कल्याण ने, एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी का।
1: सभी सुनने वालों को मेरा यानी किरणी का नमस्कार। आपका स्वागत है एक शानदार संगीत यात्रा में। इस शो में हम लेकर आ रहे हैं आपके दिलों को छू लेने वाले रेट्रो हिट्स, जिनकी धुनें हमेशा ताजगी का एहसास कराती है। और आज का हमारा टॉपिक है यादें। यादें भी अजीब होती है, दिल को बहलाती है, कभी हंसा देती है, कभी रुला जाती है।

बिछड़ कर भी जो पास रह जाती है वो यादें ही तो है जो कभी नहीं जाती है। यादों का असर कुछ ऐसा है जैसे बरसात की पहली बूंद का नशा है।

इसके साथ ही आज के रेट्रो हिट्स प्रोग्राम का समय समाप्त हो रहा है। अब बारी है अलविदा लेने की, लेकिन याद रखिए रेट्रो हिट्स का सफर कभी खत्म नहीं होता। हम जल्दी ही फिर से मिलेंगे पुराने गानों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 5। आज के कार्यक्रम का शीर्षक था यादें। कार्यक्रम को प्रस्तुत किया आरजे किरनी ने, रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने और एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी का था। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति। एक

बहार गजल, शाम है धुंधली धुंधली, आंखें हैं मखमूर मेरी, जाने किस सितमगर ने ख्वाबों का घरौंदा राख किया। शायकीन गजल की महफिल में हमारा खलूस भरा आदाब।

बहार गजल आप सुन रहे हैं रमेश मराठा के साथ। हमसे मिलता तो होगा हूबहू अंदाज उनका, तुम्हें पूछने वाले लेकिन हम जैसे न होंगे। हमसे मिलता तो होगा हूबहू अंदाज उनका, तुम्हें पूछने वाले लेकिन हम जैसे न होंगे।

आवाज भी न दो, मैं जिंदगी की हसरतों के आसपास हूं। ऐसा नहीं कि उससे मैं नाराज हूं, बहुत वो मुझसे दूर ही सही, मैं उसके पास हूं।

आईना आज भी देखता हूं, पर वो बात कहां जब हम तुम आईने में बहुत करीब होते थे। सामीन, बहार फसल की इस महफिल से अब चाहेंगे हम रुखसत। रुखसत।

जी हाँ, आप सुन रहे थे FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता के प्रसारण, और आज के हमारे प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक रहते हैं। आप हमारे प्रसारण फ्रीक्वेंसी 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर सुनते हैं, जो आप अम्बाला के 20 किलोमीटर के दायरे में आप सुनते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी 90.0 पर, और मोबाइल के माध्यम से आप पूरे विश्व में सुनते हैं। हमारे सुनने का एड्रेस है webplayer.radiovitasta.com, या हमारी वेबसाइट radiovitasta.com भी आपके लिए आपका रेडियो है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मरहटा। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले आपको कुछ जानकारी देते हैं और साथ में देते हैं कल के कार्यक्रमों का विवरण। इस समय स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:01 और 10 सेकेंड। श्रोताओं, मैं हूं आपका रेडियो होस्ट और दोस्त भरत सोपोरी। सुरीली गीतों, दिलचस्प बातों और अपनों के साथ का जो सिलसिला आज सुबह शुरू हुआ था, अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कि हम आज के इस खूबसूरत सफर को यहीं पर विराम दें। जी हां, रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर अब वक्त हो चला है आज के प्रसारण के समापन का। पर रोज की तरह हम हर विषय किसी न किसी विषय पर हर दिन हम बात करते हैं। आज का हमने विषय जो चुना है वह है दूरियां और दिल के रिश्ते। श्रोताओं, आज विदा लेने से पहले मन में एक बात आई जो आपके दौर की एक बड़ी हकीकत है। आज हमारे घर के बच्चे, हमारी युवा पीढ़ी कोई पढ़ाई के सिलसिले में तो कोई करियर और नौकरी के सिलसिले में अपने घरों से, अपने शहर से और यहां तक कि देश से भी दूर हो रहे हैं। पीछे घरों में रह रहे हैं हमारे माता पिता, हमारे बुजुर्ग, दादा दादी या नाना नानी। घर की वो दीवारें जो कभी बच्चों की किलकारियों से गूंजती थी, वहां अब एक अजीब सी खामोशी पसरे होती है। ऐसे में आज के इस दौर में बच्चों और बुजुर्गों के बीच में एक बेहतरीन समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन और समझ होना बहुत ही जरूरी और आवश्यक है, ताकि रिश्तों की गर्माहट में कभी कोई कमी ना आए। कैसे बने रहे रिश्तों में ये मजबूती, आइए कुछ बिंदु आपके सामने रख देता हूं। पहला, वक्त का निवेश। बच्चे चाहे कितना भी मसरूफ यानी व्यस्त हों, दिन में कम से कम एक बार अपने माता पिता या बुजुर्गों का हालचाल जानने के लिए फोन जरूर करें। आपकी सिर्फ 5 मिनट की बातचीत उनके पूरे दिन की थकान और अकेलेपन को मिटा सकती है। जी हां, दूसरा, तकनीक का सही इस्तेमाल। आज का दौर डिजिटल दौर है। अपने घर के बुजुर्गों को वीडियो कॉल करना सिखाएं। जब वो आपका चेहरा देख लेते हैं तो उनका आधा फिक्र कैसे ही दूर हो जाता है। तीसरा, सहानुभूति और धैर्य। माता पिता को भी समझना होगा कि बच्चे बाहर संघर्ष कर रहे हैं, और बच्चों को समझना होगा कि उम्र के इस पड़ाव पर माता पिता, दादा दादी, नाना नानी को सिर्फ आपके थोड़े से ध्यान और प्यार की जरूरत है। याद रखिए, दूरियां भूगोल की हो सकती है, दिलों की नहीं। बच्चे भले ही 7 समुद्र पार हो, लेकिन अगर सुबह की शुरुआत माता पिता के आशीर्वाद और रात का अंत उनके हालचाल से हो, तो वो कभी खुद को अकेला महसूस नहीं करेंगे। ये था आज का विषय, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये विषय कहीं न कहीं जानकारी दे रहा होगा, और आप भी इस बारे में सोचिए। और अगर आपको ये विषय अच्छा लगा तो हमें अपना फीडबैक भी भेजिएगा हमारे नंबर पर, जो हम अभी कुछ समय में आपको नोट कराने जा रहे हैं। तो चलिए इस खूबसूरत सोच के साथ कि इस आज के सफर को समेटते हैं, और इस प्यारी सी शायरी के साथ जो रोज मैं आपके लिए पंक्तियां लाता हूं। आज की पंक्तियां यूं हैं, दिलों में प्यार हो तो दूरियां कोई मायने नहीं रखती। दिलों में प्यार हो तो दूरियां कोई मायने नहीं रखती। रिश्तों की डोर मजबूत हो तो दीवारें नहीं डलती। भले ही दूर रहते हैं बच्चे आज अपनी मसरूफियत में, पर दुआएं बुजुर्गों की हरदम उनके साथ चलती है।
जी हाँ दोस्तों, आप सभी को और हम सभी को ये समझना होगा कि आज के दौर में समय जो है वो बदल रहा है, हमें भी अपने दौर के साथ साथ चलना होगा। और बच्चों की भी जिम्मेदारी है, वो कम से कम 24 घंटे में 5 मिनट जरूर अपने परिवारजनों और वृद्धजनों के लिए निकालें। तो रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आज का हमारा और आपका साथ यहीं तक। अब स्टेशन से विदा लेने का समय हो गया है। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपनों के करीब रहें। और अपने रेडियो दोस्त भारत सोपोरी को दीजिए इजाजत। कल सुबह फिर मुलाकात होगी नई उम्मीदों, नई तरंगों, नई आवाजों और बेहतरीन तरानों के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।